0: जानकारीका लागि सम्पर्क 9856744486।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ।
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

रोड में गुड़ियों मोटर कार, बाय रोड में गुड़ियों मोटर कार, पहलो घट में माया बसे हो कि है न यार, पहलो घट में माया बसे हो कि है न

0: पाजी थोड़ा सा क्लोज, थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, रुको, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह भाई वाह, की जोड़ी है यार, गुड।
1: ध्वनि, तू कहाँ गुम हो जाती है? तू भी चलना हमारे साथ,
2: आइए आइए सर,
1: सनसेट पॉइंट तक फोटो खिंचाना।
3: नहीं, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ ऊंची ऊंची फोटो सेशन में। आई विल स्टे हियर, जस्ट मी।

0: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो #you #out #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे पुतली से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
3: Or sang the FM, Ponchana Benny Hurts.

0: पानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स खुलेर जियो
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी